इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर और इट हैपेंस में आपके साथ है सताक्षी। दोस्तों एक बार एक मूर्ति बनाने वाले ने सोचा कि आज एक मूर्ति बनाई जाए, तो वो पत्थर से मूर्ति बना रहा था। उसने पहले पत्थर पर हथौड़ी चलाई तो पत्थर रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर पर अपना काम शुरू किया। उस पत्थर ने सारा दर्द सहा और कुछ दिनों में एक बेहद खूबसूरत भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और पहले वाले पत्थर को जो रो रहा था उसे बाहर नारियल फोड़ने के लिए रख दिया गया। अब रोज लोग उस बाहर वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते और वो दर्द से चिल्लाता रहता, और अंदर वो पत्थर जो सारे दर्द सह गया था उसकी पूजा होने लगी, क्योंकि उसका शेप अब भगवान का शेप हो चुका था। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है दोस्तों। आज की मेहनत और स्ट्रगल भले ही आपको दर्द दे, लेकिन यही स्ट्रगल, यही संघर्ष कल आपको निखारेगा। इसलिए मुश्किलों से डरिए नहीं और मुस्कुराते रहिए, और उन्हीं मुश्किलों के नाम ये ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर इट हैपेंस।

0: अरे मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह,
1: लाइक इट?
2: या इट्स नाइस।
0: कुछ भैया खुद डिजाइन करके गए थे? ये रहा डिजाइन।

0: तो पापा ने मैन में जादी।
1: जी हाँ, इट हैपेंस। सुन रहे हैं आप इस वक्त सताक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। देखिए, जब भी ना आप घर से निकलें और आप ट्रैफिक में फंस जाएं और आपको प्रेशर फील होए तो बस एक लंबी सांस लीजिए और याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। एक्चुअली इस वक्त पूरा शहर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है। अपनी इस दौड़ को एक खूबसूरत सफर बनाइए। किसी राह चलते अजनबी को देखकर मुस्कुरा दीजिए, शायद आपकी एक मुस्कुराहट किसी का पूरा दिन बना दे, है ना। तो बस इसी सफर के नाम, इसी मुस्कुराहट के नाम, इसी खुशनुमा माहौल के नाम आइए सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस के साथ आज फिर से हमारा और आपका साथ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हो गया है। वैसे हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ नया सीखने का, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज, जी हाँ रोज, सिर्फ 5 मिनट भी अपनी किसी हॉबी को देते हैं, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, डायरी लिखना हो या कोई नई लैंग्वेज सीखना हो, तो साल के एंड तक आप उस चीज में काफी आगे निकल चुके होते हैं। अपने रोज के रूटीन में से थोड़ा सा वक्त खुद के डेवलपमेंट के लिए जरूर निकालिए और उसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। किस बात की देर है, जिंदगी आपकी है, डेवलपमेंट आपका होना है, तो बस खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ इसी बात पे और सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप हैं और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं सुबह के कुछ बहुत ही खास मॉर्निंग ट्रैक्स। वैसे आजकल का दौर डिजिटल दौर है, जब सब कुछ सिर्फ एक ही क्लिक पर बदल जाता है और एक ही क्लिक पर आपको मिल भी जाता है। पर मुझे कभी कभी वो पुराना दौर बड़ा याद आता है, जब जॉब लगा करती थी तो मेल्स नहीं हुआ करते थे। तब तो एक लेटर को पहुंचने में आप तक एक एक महीना लग जाता था, और कभी कहीं दूर से लेटर आ रहा है अगर, तब तो भाई बहुत लंबा वक्त लग जाता था। इस तरह से कई बार ना ऐसा होता था कि लोग एक जगह ज्वाइन कर चुके होते थे जॉब में, और तब पता चलता था कि अरे किसी बहुत बड़ी जगह सिलेक्शन हो गया। इस तरह से कई सारी चीजों को लेकर ना हम इंतजार करने के आदी होते थे। आज मैं देखती हूँ लोग बहुत इम्पेशेंट हैं, वो किसी चीज के लिए 10 मिनट भी इंतजार करना पड़े ना तो इरिटेट हो जाते हैं। और यही खासियत थी जो अभी भी पिछले जमाने के लोग, जब फोन्स नहीं थे इतने एक्टिव नहीं थे तो, या इंटरनेट नहीं था फोन्स में, तो जो लोग उस दौर से गुजरे हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि आज की जनरेशन कितनी इम्पेशेंट हो गई है। जबकि पहले की जनरेशन के साथ ऐसा नहीं था, उसे चीजों की आदत थी, उसे पेशेंस रखने की आदत थी, है ना। तो हाँ, डिजिटल दौर में शायद एक क्लिक में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। क्या सोचते हैं बताइए मुझे, और चलिए आपको आगे लेकर चलती हूँ। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रिस्फानी 1701 AM।

दुनिया हमसे कहती है कि स्ट्रांग बनो क्योंकि रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि रोना कमजोरी की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। जो बादल बरसते नहीं है ना, वो आसमान को भारी कर देते हैं। ठीक वैसे ही जो आंसू बहते नहीं है, वो दिल को भारी कर देते हैं। तो अगर किसी मोड़ पर ऐसा लगे कि दिल टूटा है, या आप हर्ट हुए हैं, या आपको किसी ने धोखा दिया है, या जिंदगी की भाग दौड़ से आप थक गए हैं, तो रोना बहुत लाजमी है। और रोना आए तो खुद को रोकिए नहीं, रो लीजिए, क्योंकि इन आंसुओं के बह जाने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो अंदर से आपको और भी मजबूत बनाएगा। और उसी सुकून के नाम ये अगला ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

दोस्तों, कभी जिंदगी में अगर आपको ऐसा लगे कि आप लाइफ में सिर्फ अंधेरा है, या अगर आपको ये लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ठहरिए। कभी आपने टूटते हुए तारे को देखा है? जब वो आसमान से टूटता है तो क्या आसमान खत्म हो जाता है? नहीं, उसमें आसमान खत्म नहीं होता, बल्कि वो एक नई शुरुआत होने की गवाही देता है। अपने दिल पर हाथ रखिए और इसकी धड़कन को महसूस कीजिए। ये धड़कन कह रही है कि आप जिंदा हैं, और जब तक आप जिंदा हैं, उम्मीद जिंदा है, और जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक उम्मीद छोड़नी तो नहीं है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ इसी बात पर, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्फानी। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

0: experience. और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंजन ओवाने अंते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, बॉलीवुड विच अक्सर यह मनिया जाता है कि बॉक्स ऑफिस की सफलता सिर्फ 100 करोड़ के बजट से वड्डे सुपरस्टार से स्टार पावर से निर्भर करती। हालांकि 2010 तो 2018 के दहाके ने इस मिथ नूं पूरी तरह दे नाल तोड़ दिता। इस दौरान कई अजिहियां फिल्मां आईयां हैगियां ने जिन्हां विच ना तां खान वर्गे वड्डे नाम सी ते ना ही शानदार विजुअल इफेक्ट्स दा तामझाम, फिर भी अपनी मजबूत कहानियां दी वजह नाल ए स्लीपर हिट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुईयां। विकी डोनर तो लैके स्त्री तक इन्हां बहुत सारिया घट बजट दिया फिल्मां ने साबित कर दिता है कि जब कंटेंट ही असली सुपरस्टार होवे तां घट इनवेस्टमेंट विच वी इतिहास रचिया जा सकता है। इन्हां बारे ही तुहानूं दस्सदी आं कि कि फिल्मां हैगियां ने एक एक करके, पर पहला सुनो एक गीत।

हाँ जी जी आनू जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी वंसन उवा ने हमते जी आरचे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने होयो। इना फिल्मां दे घट बजट ते वड्डे स्टार कास्ट तो बिना वाली फिल्मां दे विच सब तो पहला नाम हुंदा हैगा जिहड़ा, वो है जी फिल्म है फंस गए रे ओबामा। ये फिल्म 2010 दे विच आई सी। बजट फिल्म का महज 3-4 करोड़ से ते कलैक्शन इसने 14 करोड़ कर ली सी। इस दागे की शुरुआत विच डायरेक्टर सुभांशु कपूर ने एक डार्क कॉमेडी पेश की सी। ग्लोबल मंदी की पृष्ठभूमि से बनी इस फिल्म विच कई बड़े स्टार्स नहीं सी। रजत कपूर और संजय मिश्रा वर्गे टैलेंटेड एक्टर सी के। पर इस दी राइटिंग इन्नी वधिया सी कि दर्शकों के दिल छू गई। फिल्म ने ना सिर्फ अपनी लागत वसूली बल्कि मुनाफे दे मामले विच कई वड्डे बजट दियां फिल्मां नूं भी पिछे छाड़ दिता सी। डबल ट्रिपल कमाई करकी सी क्योंकि एक्टर बहुत ज्यादा वधिया सी ते कॉन्टेंट ही किंग सी।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

Mixing in the house. हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसारी वंसन ओवर एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने होने हैं। तो फिर देखो 2012 तो हूं 2013 दे विच जंप करते हैं सीधा, तो 2013 दे विच आई सी आशिकी 2 बजट 9 तो 12 करोड़ दे विच करता सी कलेक्शन, इसने 100 तो ऊपर दी कर ली सी 100 करोड़ जी हां। जब मोहित सूरी ने आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के नाल आशिकी 2 बनाने का फैसला किया सी ना, तो किसी को उम्मीद नहीं सी कि इस साल की सब तो वड्डी हिट फिल्मा दे विच एक बन जाऊगी। फिल्म के म्यूजिक अरिजीत सिंह की आवाज ने नौजवानों के विचकार अजिहा क्रेज पैदा किया कि 12 करोड़ की फिल्म ने 100 करोड़ तो ज्यादा तकरीबन 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया सी। ये अज भी घट बजट की रोमांटिक फिल्मों के विचों एक मनी जानती है, तो मिसाल वजह देखी जाती है कि इसका कोई तोड़ नहीं है।

0: लेकिन साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
4: Some
3: है।
4: Numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल सि बने होए। जिन्हां फिल्मां दी असीं गल कर रहे हैगे ना, इन्हां दे विच ज्यादा दे विच तुहानू आयुष्मान खुराना जरूर देख जाणगे, क्योंकि दूसरे दा मैं हुणे नाम लैण जा रही हां, ते ओह है जी दम लगा के हाइशा। 2015 दे विच आई सी, बजट महज 14 करोड़ सी। ज्यादा यशराज फिल्म्स वर्गे वड्डे बैनर ने एक छोटे शहर दी इस सधारण कहानी ते दाव लगाया, ता फिल्म दे प्रमोशन दे लई बहुत घट बजट सीगा। आयुष्मान खुराना ते भूमि पेडनेकर ने इस दे नाल डेब्यू कीता सी। दी जोड़ी ने मिडिल क्लास इंडिया दे दिलां नूं छू लिया। वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म एक डार्क हॉर्स साबित हुई है, कि ब्लॉकबस्टर दा टैग मिलिया। कमाई इसने डबल ट्रिपल तो कितने ज्यादा कर ली सी, 71 करोड़ की कमाई सी। ते आज खैर भूमि पेडनेकर नू देखो, ते उस फिल्म ने देखो, विश्वास भी नहीं कर सकता कोई कि यह भूमि ही है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: मम्मी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गई।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन के कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन LNP कन्वेंशन में प्रीमियर का बड़ा ऐलान, ब्रीच बेल गो टू जेल। जी हाँ, कन्वेंशन में LNP कन्वेंशन में क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिस्फोली ने युवा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक कड़े कानून का ऐलान किया है। नए कानून के नाम का नाम है ब्रीच बेल गो टू जेल। इसके तहत अगर कोई गंभीर अपराध का आरोपी जमानत पर बाहर रहने के दौरान दोबारा अपराध करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जेल जाना होगा। वहीं नए यूथ जस्टिस कानून का तीखा विरोध शुरू। जी हां, प्रीमियर के इस फैसले के बाद ब्रिस्बेन और पूरे क्वींसलैंड में मानवाधिकार और स्वदेशी कानूनी संस्थाओं ने इस कानून का बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। नेशनल ऑफ एबोरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लीगल सर्विसेज का कहना है कि अधिक बच्चों को जेल में डालने से समाज सुरक्षित नहीं होगा। वहीं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के बीच टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और लोकल टूरिज्म ऑपरेटर्स को विशेष ग्रांट दी जाएगी। वहीं ब्रिस्बेन में फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स की शुरुआत। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नया फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स शुरू हो गया है। इसका मकसद वहां के पारंपरिक खान पान और कुकिंग स्टाइल्स को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं बच्चों के लिए डांस प्रोग्राम का बजट खत्म, बंद होने की कगार पर। ब्रिस्बेन से एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर भी है। एबोरिजिनल बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने वाला एक बेहद पॉपुलर कम्युनिटी डांस प्रोग्राम फंडिंग खत्म होने की वजह से बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं डॉकर रिवर बैंड का लाइव म्यूजिक टूर। जी हाँ, बुलेटिन के आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक एंटरटेनमेंट की खबर है। मशहूर डॉकर रिवर बैंड इस समय अपने गट्स टूर 2026 के तहत लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहा है। ब्रिस्बेन के पास के इलाकों में भी इनके शो होने वाले हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का कहर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज से। मुंबई और दक्षिण गुजरात में मानसूनी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग IMD ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े। उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी मौसम को लेकर चिंताजनक खबर है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश

0: बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से करीब 26 जिलों के 333 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं उत्तर भारत को गर्मी से राहत, दिल्ली में बदला मौसम। राहत की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हैंडलूम हैकाथॉन 2026। कपड़ा मंत्रालय ने आज देश के बुनकरों और हैंडलूम सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का चैलेंज हैंडलूम हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। वहीं भारत और आसियान यानी कि ASEAN के बीच बड़ी व्यापारिक बैठक। जी हां, भारत आज नई दिल्ली में आसियान भारत गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट की 13वीं ज्वाइंट कमेटी मीटिंग होस्ट कर रहा है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा भारत और आसियान देशों के साथ व्यापारिक नियमों को आसान बनाना है। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में डोनेशन की जांच के लिए कमेटी गठित। राम मंदिर के बाद अब यहां भी तहकीकात जो है वो होनी शुरू हो गई है। इसी के साथ अब सीधा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले पैसिफिक ओशन में चीन का मिसाइल टेस्ट, बढ़ा तनाव। ग्लोबल खबरों की बात करें तो चीन ने पैसिफिक ओशन में अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि इस मिसाइल में डमी वॉरहेड था, लेकिन इस टेस्ट के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी पर दर्ज की चार्जशीट। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड के खिलाफ लॉस एंजलिस में चार्जशीट दायर कर दी है। इसके साथ इंडोनेशिया में पीएम मोदी का बड़ा बयान, टू स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता। इंडोनेशिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर कई समझौतों पर साइन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका टू स्टेट सॉल्यूशन ही है। वहीं वेनेजुएला में भूकंप के बाद अमेरिका की बड़ी मदद। वेनेजुएला में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां हालात बेहद खराब हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसी के साथ एआई बूम से सैमसंग के मुनाफे में 1800% का उछाल। बिजनेस की दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड की वजह से साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस तिमाही में करीब 1800% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नाटो समिट के लिए तुर्की पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्विट्जरलैंड पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। जी हां, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से स्विट्जरलैंड की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर इतिहास रच दिया। साल 1954 के बाद यह पहली बार है जब स्विट्जरलैंड की टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने पुर्तगाल को किया बाहर। जी हां, वर्ल्ड कप के एक और बड़े नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं यूएसएल चैंपियनशिप सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक और रोड आइलैंड का मैच आज। जी हां, यूएसए की बड़ी फुटबॉल लीग यूएसएल चैंपियनशिप में आज सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक एफसी का मुकाबला रोड आइलैंड एफसी से होने जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के ड्रॉ घोषित। लोन बॉल्स बाउल्स के खेल से खबर है कि ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल ड्रॉ आज जारी कर दिए गए हैं। ये टूर्नामेंट अगले महीने यानी कि अगस्त में क्लब ट्वीट में खेला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 पर, याद रहे 04006444 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
8: है। Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
9: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
10: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: KR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Sir, on stage, 5 minutes.
3: Okay.
2: Tumhari ho?
3: Main jaa. लगता है रूम में रह गया।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

हाँ जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी वंसन वाने हम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। इना फिल्मा दे काट बजट ते वड्डे स्टार कास्ट तो बिना वाली फिल्मा दे विच सब तो पहला नाम हुंदा हैगा जिहड़ा वो है जी फिल्म है फस गए रे ओबामा। ये फिल्म 2010 दे विच आई सी। बजट फिल्म का महज 3-4 करोड़ से ते कलैक्शन इसने 14 करोड़ कर ली सी। इस दहाके की शुरुआत विच डायरेक्टर सुभांशु कपूर ने एक डार्क कॉमेडी पेश की सी। ग्लोबल मंदी की पृष्ठभूमि से बनी इस फिल्म विच कई बड़े स्टार्स नहीं सी। रजत कपूर ते संजय मिश्रा वर्गे टैलेंटेड एक्टर सीगे पर इस दी राइटिंग इन्नी वधिया सी कि दर्शकों के दिल नूं छू गई। फिल्म ने ना सिर्फ अपनी लागत वसूली बल्कि मुनाफे दे मामले विच कई वड्डे बजट दियां फिल्मां नूं भी पिछे छाड़ दिता सी। डबल ट्रिपल कमाई करकी सी क्योंकि एक्टर बहुत ज्यादा वधिया सी ते कंटेंट ही किंग सी।

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Skyrate beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल सि बने होए। जिन्हां फिल्मां दी असीं गल कर रहे हैगे ना, इन्हां दे विच ओ ज्यादा दे विच तुहानू आयुष्मान खुराना जरूर देख जाणगे, क्योंकि दूसरी दा मैं हुणे नाम लैण जा रही हां, ते ओ है जी दम लगा के हाइशा। 2015 दे विच आई सी, बजट महज 14 करोड़ सी। ਜਦ ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਦਾ

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी टेक परफेक्ट बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो रुसवानी उन सर वन एम जी आर छे संदेश अलग दिनाल से पाने हुए। अगला नाम है जी फिर आयुष्मान की फिल्म है कि है बधाई हो 2018 आई सी बजट 29 करोड़ से कमाई तो बहुत ज्यादा सी जी हाँ कई गुणा ज्यादा सी। हालांकि इसका बजट पिछलियां फिल्मों तो थोड़ा ज्यादा सीगा आयुष्मान दिया पर बॉलीवुड के वड्डे पैमाने के हिसाब नाल एक छोटी फिल्म सी एक मिडल एज कपल की प्रेगनेंसी की कहानी से आधारित सी। इस फिल्म ने आमिर ते सलमान दिया फिल्मा जिना कमाया सीगा 29 करोड़ के इनवेस्टमेंट तो 200 करोड़ तो ज्यादा कमाना इस दहाके की सब तो वड्डी फाइनैशियल सफलतावां विचों एक मनिया जाता से। इस आयुष्मान खुराना ते नाल सानिया मल्होत्रा नजर आए सी नीना गुप्ता भी सी ते बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म सी कहानी एकदम डिफरेंट सी ता सबनों पसंद आई सी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Sir, on stage, 5 minutes.
3: Okay. तुम्हारी मैं जा लगता रूम में रह गई.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: चेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी

लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

ser tu bellata. Marihatta, no sai.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं, जिसे चाह कर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी सताक्षी के साथ।

हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

मधुबानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार, जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुँच कर भी जमीन से रखे। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

ये था आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे, और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी और जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। आज है फ्राइडे, वीकेंड बस एक कदम दूर है दोस्तों, तो आज का दिन जो है आपका पॉजिटिव एनर्जी और स्माइल के साथ शुरू करते हैं। चाहे आप

वेलकम है जो रेडियो ब्रिस्मानी में। आपको वैसे पता है खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है हर दिन किसी ना किसी बात के लिए शुक्राना करते रहना। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव सोच जो है पूरे दिन को हमारे खूबसूरत बना देती है और हमारे माइंड को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखती है। आइए आपको भी स्ट्रेस फ्री रखते हैं इस गीत के साथ, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्मानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मेलबर्न में एनुअल लीडर समिट के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कॉपरेशन पर भी वहां पे चर्चा हुई। वहीं पर मेलबर्न में इंडियन कम्युनिटी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल्चर परफॉर्मेंसेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ने इवेंट को खास बना दिया। वहीं पर क्वींसलैंड में तेलस्तरा नेटवर्क आउटेज के बाद इमरजेंसी सर्विसेज और कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर अथॉरिटीज रिव्यू कर रही है। तो दोस्तों, फ्राइडे का नाम सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गया है ना, और आप सभी को मैंने बहुत सारी खबरें भी, हेडलाइंस भी दी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी। जाइएगा कहीं भी मत, क्योंकि आज है बहुत सारी बातें आप सभी के साथ गप्पे मारनी है भाई। रेडियो ब्रिसवानी, आप सभी सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को।

हां जी दोस्तों, तो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, जाने का सफर चल रहा है। आज है फ्राइडे, तो भाई फ्राइडे का नाम वैसे मैंने पहले कहा, सुनते ही ना मूड जो है ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है, क्योंकि भाई वीकेंड आ चुका होता है और हमारा प्लान जो है शुरू हो जाते हैं। वैसे आज का आपका प्लान क्या है? हाँ, आज का ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर वीकेंड की शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं? जल्दी मैसेज करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, गाने तो मैं आपको बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक सुनाती ही हूँ, वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं और अपनी इस फ्राइडे मॉर्निंग को बहुत स्पेशल बनाते हैं इस गीत के साथ। रेडियो ब्रिस्वानी सुनते रहिए और बने रहिए अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चाने जैन के साथ।

हाँ जी, तो कैसा लगा ये गीत? आई होप यू एंजॉयड इट। और आप सभी से आज मैंने कुछ पूछना है। जी हाँ, आपको पता है ब्रिस्बेन रिवर को पहले क्या कहा जाता था? सोचिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ब्रिस्बेन रिवर को पहले रिवर विद मैनी बेंड्स कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल कर्व्स हैं। आज भी ये ब्रिस्बेन सिटी की पहचान है, रिवर विद मैनी बेंड्स। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो अगर हम कुछ और अपडेट्स के बारे में जानें तो दोस्तों, ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर हॉलीडे ट्रेवल को देखते हुए पैसेंजर्स को एडवाइस किया गया है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट जरूर पहुंचे ताकि चेक इन और सिक्योरिटी प्रोसेस जो है वो आराम से कम्प्लीट हो सके। ये खास एडवाइस जो है वो दी गई है। तो अगर आप भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स कोई ले रहे हैं तो भाई समय पर जरूर पहुंच जाएं, जी हाँ, ताकि आपको भी कोई दुविधा ना हो और आपको भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट फेस ना करना पड़े। दोस्तों, बॉलीवुड में ना इस वक्त जो है कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट को लेकर बज बना हुआ है। बड़े स्टार्स जो है अपनी अपकमिंग फिल्म्स की जो शूटिंग है और प्रमोशंस है उसमें काफी बिजी भी हैं और फैंस भी ट्रेलर्स और फर्स्ट लुक्स का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना, तो OTT प्लेटफॉर्म पर भी नए वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही है। अगर आप वीकेंड पर घर पर रिलैक्स करने का प्लान बना रहे हैं तो डेफिनेटली फैमिली के साथ ना एक अच्छी मूवी नाइट तो जरूर प्लान करें। तो चलिए इसी के साथ मैं प्लान करती हूँ अगला गीत सुनाने का। नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे चांदनी बस ब्रेक नहीं ले रही, बोली जा रही है। तो आइए जी सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं अपनी दोस्त चांदनी को। जी हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों अब वक्त है आज के शो के लास्ट गाना सुनाने का, क्योंकि जी वक्त हो चुका है शो को एंड करने का। आप सभी का वैसे ना दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपनी फ्राइडे मॉर्निंग हमारे साथ बिताई है, और अपना ख्याल जरूर रखिए, सेफ ड्राइव कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। वैसे दुख हो रहा है सैटरडे संडे इतने दिनों तक दूर रहने का, लेकिन नहीं जी, इंजॉय भी जरूर करना चाहिए ना फैमिली के साथ। तो आप अपना वीकेंड बहुत ही अच्छा बिताएं, ताकि आप मंडे को जरूर मुझे बताएं कि भाई कैसा गया है और क्या क्या प्लान किया आप सभी ने। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। हमारी सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने जारी किया ईरान के 90 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो, तेहरान बोला जवाब देंगे। अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीज फायर के समाप्त करते ही अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ईरान के भीतर लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर किए एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। इन हमलों का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में लगा $50,00,000 का जुर्माना। अमेरिका की अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लेखिका ई जीन कैरोल को $50,00,000 देने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कोर्ट को लेखिका के साथ यौन उत्पीड़न करने और उन्हें बदनाम करने का दोषी पाया था। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पीएम मोदी ने मेलबर्न के मार्वेल स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पिछले 12 सालों में उनकी तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। पीएम ने इसे हैट्रिक बताया। पूरे भारत में बारिश ने मचाई तबाही, दिल्ली यूपी समेत 9 राज्यों में हाई अलर्ट। पूरे भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात बाधित रहा। दिल्ली और महाराष्ट्र में ढही इमारतें, उत्तराखंड से गुजरात तक भारत के कई राज्यों में आफत की बारिश। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव और बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र से भी कई इमारतों के ढहने की खबर सामने आई। कांटे की बाजी मार कर ले गया श्रीलंका, तीसरे वनडे में भारत को हराकर सीरीज पर जमाया कब्जा। आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका अंडर 19 टीम ने इंडिया अंडर 19 टीम को एक विकेट से हराकर तीन वनडे मैचों की अनऑफिशियल सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने वीके विनीत के शतक की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 290 रन बनाए थे। 291 रन के टारगेट को श्रीलंका ने 50वें ओवर के आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर चेस कर लिया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर, हमारे साथ सुबह का सफर में आप जुड़ गए हैं। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारे ये खूबसूरत साथ रहेगा और आज है 10th July 2026, आज फ्राइडे है दोस्तों, शुक्रवार का सफर हमारे साथ, ढेर सारा प्यार आज के लिए आपको। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत के साथ सुबह का आगाज कर रहे हैं और 9 मिनट हो गए हैं 7 बजकर। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। आज ब्रिस्बेन के लिए 12 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा और पॉसिबल लाइट रेन की संभावना है, टॉप्स रहेंगे 20 और सैटरडे को सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20, संडे को 45% चांस रेन बताया गया है ब्रिस्बेन के लिए। मेलबर्न 3 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 15 और कैनबरा के लिए बताया गया है 4 डिग्रीज अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 13 और सिडनी के लिए 10 डिग्रीज अभी

Hey, mostly cloudy day, tops रहेंगे 15, 35% chance rain बताया गया है. गोल्ड कोस्ट के लिए 14 डिग्री अभी है, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 20. विंड गस्ट बताया गया है 22 किलोमीटर इन आवर और आज रेन 100% रेन बताया गया है गोल्ड कोस्ट के लिए. सनशाइन कोस्ट 15 डिग्री अभी है, टॉप्स रहेंगे 18 और लाइट रेन की संभावना है. और दोस्तों संडे को सनी डे, संडे को सनी डे रहेगा सनशाइन कोस्ट में. और यही वेदर है दोस्तों. और आपके अंदर का जो वेदर वो कैसा है, क्या बता रहा है, आज कैसा दिन रहेगा आपके लिए, सोचिए.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: Fire ants तुहाडे इलाके विच मौजूद हन. जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ. असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे. होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो. ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार आई एम सो वरीड. एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस.
11: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस. और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
12: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
13: दोस्तों 16 after 7 और हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. मैं हूँ आपके साथ ही नीलम. 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा सुबह का सफर में. और अभी हमारे पास लेटेस्ट कोई ट्रैफिक अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ भी आता है हाँ तो आपको बताते चलेंगे. वैसे रास्ते पर है आप तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. और बच्चे भी अभी आई थिंक इट्स लास्ट वीक फॉर द हॉलीडेज, ऑफ द हॉलीडेज, एंड बच्चे घर पर है. शायद प्लान्स बनाए हैं आपने. वैसे देयर इज बिट ऑफ ओवरकास्ट एट द मोमेंट, शायद पॉसिबली लाइट रेन भी रहेगा, लेकिन शायद जिधर आप जा रहे हैं उधर पानी नहीं बरसेगी, तो यू आर इन लक. वैसे सनशाइन कोस्ट की तरफ ड्राइव कर रहे हैं आप तो सनी डे बताया गया है, और गो कोस्ट की तरफ रेन बताया गया है. लेकिन बारिश का जो मजा है वो एक कुछ अलग है. लेकिन यू डोंट वांट टू गेट सिक टू. अभी सो थ्रोट और फ्लू आहिस्ते आहिस्ते क्रीपिन हो रहा है, एंड इट्स ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए इट्स ऑलरेडी आउट देयर, और कुछ लोगों के लिए आहिस्ते आहिस्ते आप कैच कर रहे हैं सो थ्रोट अबिट देन यू नो कॉफिंग एंड रनी नोज. तो जो भी है, अपने आप को एकदम भी भिगारा नहीं है अगर आप बारिश पसंद करते हैं. लेकिन अपना बेहद ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मेक श्योर यू हैव अ बीनी, अम्ब्रेला रेडी रहे. आप जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं उसके लिए आप रेडी रहे दोस्तों, और एंजॉय योर डे टुडे. और अभी अभी शायद सो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट उठने ही वाले हैं लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है. कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गेट अप नाउ, ब्यूटीफुल डे आउट देयर. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपकी अपनी पहचान.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: दोस्तों और एक अपडेट आया है ट्रैफिक में. पैसिफिक मोटरवे अपर माउंट ग्रेविट यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल है, नो ब्लॉकेज नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ग्रीन स्लोप्स. और चलिए दोस्तों और भी आगे बढ़ते हैं. कहते हैं द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स अ स्टोन, दिस डजंट मीन दैट द फर्स्ट स्ट्रोक इज यूजलेस, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट. तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ भी आप कर रहे हैं इज नॉट मेकिंग, कुछ हो नहीं रहा है आपके जिंदगी में, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश बरकरार रखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो. द थिंग इज कि छोटी छोटी जो कोशिशें आप करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि कोई इफेक्ट नहीं होता है. आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है, यू नो, एंड अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आपका लाइफ ही बदल दे, राइट? तो इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग. तो जो कोशिशें हैं वो करते रहिएगा, एंड जो आपके रास्ते पे आना है उनको वो आकर ही रहेगा, और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेनी मेनी बेस्ट विशेज टू यू एज वेल। और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कितनी बार हम ऐसा करते हैं कि कभी पार्किंग लॉट में अगर रहे अपनी कार के पास जा रहे हैं तो हमारे पास हमारा फोन रहता है, हम इतने इंग्रोस्ड रहते हैं अपने फोन को ताकने में कि आई डोंट नो वही टाइम पर क्या होता है, कुछ ना कुछ खोजते हैं हम फोन पर। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, इट्स फनी। रास्ते पर रहते हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तभी भी फोन पर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है। इतने भारी ट्रस्ट दिखाने का काम नहीं है, यू नो कुछ लोग पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर रुकते नहीं है ड्राइवर्स, तो प्लीज डू नॉट शो सो मच ट्रस्ट। आपको देखना चाहिए कि आप किधर जा रहे हैं। कि अभी दी अदर डे बुलंगाबा मैं जा रही थी एंड एक्चुअली वहाँ पर जो इतना जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ऐसा फील होता है कि कुछ लगता नहीं कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। ऑब्वियसली द साइंस तो है वहाँ पर, लेकिन एक पर्सन जा रहा है अपने फोन को देखते हुए एंड लकली वी स्टॉप्ड, बट देन द अदर पर्सन जो मेरे बगल वाले लाइन में था ही डिडंट स्टॉप, ही जस्ट ज़ूम्ड पास्ट। तो शायद उसने देखा नहीं, बिकॉज इट फील्स कि वहाँ पर कुछ ड्रामा नहीं है टू क्रिएट टू सी टू मेक पीपल सी कि वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। बट एंड दिस पर्सन ऑन द फोन लकली वॉक्ड बाय विद हिज हेड इन द फोन और चला गया, लेकिन बच गया। सब टाइम बच नहीं सकते, यू नो यू नॉट लकी ऑल द टाइम। तो हम maybe just crossing road अपने face को अपने चेहरे को उठाए और देखे अगल बगल क्या हो रहा है, you know, and see where you walking and जब फोन पे रहते हैं यू वॉकिंग स्लोली, आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, जल्दी से क्रॉस कीजिएगा, यू नो। एंड तो इसी बात पर ऐसा हुआ कि एक पर्सन ने एक वुमन को 14 इयर्स तक उसको किडनैप किया और उसको कैप्टिव रखा 14 इयर्स तक। एंड देन व्हेन उसका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि ही नेवर वेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग वंस और द वंस हु लुक स्केयर्ड, ही वेंट फॉर द वंस स्टेयरिंग एट देयर फोन्स वॉकिंग थ्रू अ पार्किंग लॉट विद द हेड डाउन एंड ईयरबड्स completely unaware of the world around them. So by the time she looked up, he was already standing right there and she never even heard him coming. Abhi aap walk par ja rahe ho, kitne log aise hote hain, earpods bhi laga lete hain, phone bhi taakte rehte hain, chalte rehte hain, kuch nahi pata. Kuch log aise hote hain, ek earphone ek kaan mein lagate hain, dusre mein sakhi unko pata chale ki bagal mein kya ho raha hai, but they're looking at the phone. Kabhi kabhi aisa hota hai, kaan bhale khula hota hai, aap kuch aur dekh rahe hain, aapka dhyan nahi rehta. तो थिंग्स हैपन, पीपल आर वॉचिंग यू। जिसको हरकत करनी होती है वो तो जानता है कि आप उनके प्रे है, राइट, उनके विक्टिम है। एंड सो अगर आप इन दूसरा चीज जो पीपल नोटिस करते हैं या अगर आपको अटैक करना चाहता है कोई, वो देखते हैं कि जो आपके हाथ है वो दोनों हाथ किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं, आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आपके दोनों हाथ यू नो आप बैग्स पकड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली यू आर डिगिंग अराउंड इन योर पर्स फॉर योर कीज एंड ये इट्स गोना टेक टाइम। अभी जब हम काम पर थे तो वहां पर सेफ्टी होता था कि रात अगर शिफ्ट फिनिश करते हैं 11:00, 11:30 आप कार पार्क जाते हैं, दो सिक्योरिटी रहता है, बट आप अपने कार तक अपने की पहले से ही निकाले, बिकॉज द की कैन वर्क एज अ वेपन। तो और किस तरह से आप होल्ड करें की सो यू कैन यूज टू अटैक, राइट। तो अगर आपके हैंड्स दोनों बैग्स पकड़ रहे हैं और यू नो सो दैट मीन्स द हैंड्स आर बिजी और आप अकेले हैं और कोई नज़दीक में नहीं है एंड यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो आपको टारगेट बना रहा है, तब तो आप बहुत ही वल्नरेबल है, यू नो। एंड
तो क्या कर सकते हैं? He said 2 seconds was all it took to tell if a woman was paying attention and if she was, he walked right past her without a second thought. So how does he know she's paying attention? A woman with her head up, her eyes forward, her keys in her pocket, her phone in her pocket instead of her hand, and her keys already between her fingers before she even reached her car, simply wasn't worth the risk to him. That's the entire difference between being chosen and being passed over. And it has nothing to do with pepper spray or self-defense class. It comes down to whether you're actually looking up and noticing what's happening around you. What should you do? Put the phone away. Keep your keys already between your fingers and walk with your head up. And drastically रिड्यूस करता है आपका चांस टू बी अटैक्ट. और ये केवल फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल के लिए भी है दोस्तों. अगर आप रात में कार पार्क में है, यू इन योर फोन, अपने फोन को देख रहे हैं, आप शो नहीं आए, आप बिजी है फोन पर, और कोई भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, आपको अटैक कर लेता है, डजंट रियली मीन कि एक वुमेन को ही अटैक करे. आजकल ज्यादातर मेन को भी अटैक हो रहे हैं. सो जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम आप रास्ते क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पर रास्ते पर जा रहे हैं, वॉक्स के लिए जा रहे हैं, इवन इवनिंग वॉक आप जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स जा रहे हैं, जहां पर ढेर पीपल नहीं, कुछ लोग एकदम अर्ली निकल जाते हैं वॉक्स के लिए, राइट, और पीपल अराउंड नहीं है, डोंट हैव योर फोन इन फ्रंट ऑफ यू एंड योर ईयरपॉड्स और हेडफोन्स और वट एवर दैट यू लिसनिंग टू. एंड जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपके बगल में क्या हो रहा है, एंड आपके सेफ्टी के लिए थिंग्स आर हैपनिंग, एंड बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें. चलिए दोस्तों, ये गीत मुझे मिला अचानक से, एंड सोचा क्यों नहीं

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे. फिल्म ताजमहल से हमने इस रिवाइवल गीत को पेश किया. और चलिए ट्रैफिक अपडेट देखते हैं. कनिंगम हाईवे मल्टी व्हीकल क्रश हुआ है. राइट लेन इज ब्लॉक्ड वेस्ट बाउंड टूवर्ड्स रोज वुड एंड पैसिफिक मोटरवे होलन पार्क वेस्ट. यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल है. नो ब्लॉकेज नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ब्रिस्बेन सिटी. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत है.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: वेलकम बैक दोस्तों. 8 बज रहे हैं और एक घंटे का सफर बाकी है. ब्रिस्बेन में 12 डिग्रीज है अभी दोस्तों. और चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका. आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों, हमेशा ये जो वर्ड क्यों है, क्यों पर मेरे पास एक कविता है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये जो क्यों है हमेशा सभी को परेशान करती रहती है लाइफ के किसी भी टाइम पर और किसी भी पढ़ाव पर। और हम हमेशा क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या, यू नो। सो चलिए सुनते हैं इस कविता को। क्यों कभी कभी सोचती हूँ मैं, क्यों हम कुछ बनना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, क्यों हम अंदर से खोखले बाहर से रंगीन हैं, क्यों तन की सजावट जरूरी है, मन की शांति काफी नहीं, क्यों चेहरे की जो मुस्कान है काफी नहीं, औदे की चमक जरूरी है, क्यों हमारी मुस्कान हमारा धन नहीं, क्यों हमारा सुकून हमारी कामयाबी नहीं, क्यों कोई औदा बड़ा तो कोई छोटा है, क्यों राजगद्दी पाना जरूरी है, क्यों पैसे की गिनती जरूरी है, खुशियां की गिनती काफी नहीं। दिस इज सो अमेजिंग एंड या सो वी कभी कभी कभी नहीं, हमेशा ऐसे जिंदगी में ऐसे टाइम्स जब आते हैं तो हम ये जरूर पूछते हैं। आई डोंट नो हु वी आस्क, बट वी डू आस्क आवर सेल्व्स मे बी ओ टू द यूनिवर्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम हैप्पी नहीं हैं, क्यों हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा, क्यों हमारे साथ ही बुरा होता है। लेकिन यू नो,

इस पर, और जो बाहर अभी तक आप भटक रहे हैं, एक्चुअली हम सब भटक रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट यू नो, हम सब भटक रहे हैं, जवाबों को खोज रहे हैं, क्यों क्यों क्यों क्यों, लेकिन जवाब अंदर ही है. ध्यान लगाना है हमें. दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग कमिंग ऑन.

वेलकम बैक दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं सुबह के सफर में। वैसे जो कि आज फ्राइडे है और आप घर पर ही रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेशल शायद आपने सोचा है करने को आज, या फिर घर पर ही काम करना है आपको, या फिर शॉपिंग जाने हैं, या फिर पार्क जाएंगे शायद। तो कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं आज, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद, या फिर ऐसे ही। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हो ना हो लेकिन अच्छा खाना होना चाहिए, यू नो, घर पर। इज द फन पार्ट, एंड इसमें मज़ा आ जाता है बिकॉज देर इज समथिंग नाइस टू ईट एट होम, एंड और आपको पसंद भी होता है, यू नो, खाना बनाना और सर्व करना और पीपल को खिलाना। कुछ लोग थ्राइव करते हैं इसमें, एंड इट्स अ गुड थिंग टू, एंड ट्राइंग न्यू रेसिपीज। और अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छा खाना नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, यू नो, आप ट्राई करते रहेंगे और शायद शुरू शुरू में अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे जैसे जैसे आपका जो आप ट्राई करेंगे, आप यू नो, कोशिश करेंगे, तो उसमें बेहतर बनते जाएंगे, एंड यू नो कि कहाँ पर आपके फ्लोज हैं आपको, यू नो, एंड हाँ। तो अगर छुट्टी चल रही है आपके घर पर ही है, तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा ही करते हैं, शायद क्रोशा करते हैं, या फिर आज केवल मूवीज देखना है आपको। और क्या आपने नोटिस किया है कि आज का यू नो, लोग ज़्यादा डीवीडीज पर मूवी नहीं देखते, थिएटर जाना पसंद कर रहे हैं। थिएटर इज़ बैक इन फैशन, एंड यू नो, लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग। एंड क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अगर अभी तक काफ़ी दिनों से आप नहीं गए हैं, मे बी यू शुड ट्राई, इट्स अमेजिंग। आई नो सभी को पसंद है कि थिएटर अमेजिंग है, लेकिन काफ़ी दिन से कभी ऐसा होता है कि मौका ही नहीं मिलता है, एंड आप सोचते हैं कौन जाएगा थिएटर। बट यू नो दैट लिटिल एफर्ट जो आपको लगाना पड़ता है कि थिएटर तक पहुंचने के लिए, वंस यू देयर, इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। गिव योरसेल्फ अ ब्रेक फ्रॉम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर टीवी एट होम एंड गोइंग आउट। एंड क्या आप ऐसे पर्सन हो कि यू नो, पहले जब DVDs नहीं, कैसेट्स मिलते थे, उनका दुकान होता था, एंड यू वुड गो एंड ब्राउज एंड लुक फॉर मूवीज एंड हैव दिस बिग बंच ऑफ मूवीज दैट आप ले जाना चाहते हैं। क्या नाम था, आई फॉरगॉटन, एंड इट वाज अमेजिंग। अभी तो है ही नहीं, एंड इट्स सो सैड अबाउट दैट, यू नो, कि आप ये अच्छी अच्छी जो दुकानें होती थी, अभी तो आई डोंट फील कि अच्छे DVDs भी कहीं पर आपको मिलते हैं, गाने वाले कि यू नो, नाइस सॉन्ग्स, जो अच्छे अच्छे गीत जहाँ पर मिलते थे, यू कुड ब्राउज। आई थिंक द थिंग इज कि इट्स मोर अबाउट ब्राउजिंग एंड लुकिंग अराउंड देन एक्चुअली बाइंग। एंड आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि अच्छा चलो, आई एम गोना बाय दिस, एंड देन यू कम बैक लेटर एंड देन बाय इट, एंड यू नो, सो लिटिल थिंग्स आप सोचते हैं कि मिस करते हैं अभी जब लाइफ में नहीं है। पहले था तो शायद कभी नहीं जाते थे, या एक दो बार गए, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। तो समटाइम्स ये छोटी चीज़ें सोचकर सैड फील भी होता है, यू नो, एंड दैट ऐसे चीज़ें नहीं है अभी। एंड अभी देखो, पिज्ज़ा शॉप्स आप जाते हैं, पिज्ज़ा मोस्टली टेक अवे, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, पिज्ज़ा मोस्टली टेकअवे हो गया है, यू नो, सो आप टेकअवे करते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्ज़ा खाने का जो मज़ा है, आई थिंक एक शॉप ब्राउन्स प्लेन्स में है, यहाँ पर ईद जिधर हम रहते हैं उधर, अनलेस यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर पिज्ज़ा, यू नो, देन दैट्स डिफरेंट। बट जस्ट अ पिज्ज़ा स्टोर, जो पिज्ज़ा में वहाँ पर रेस्टोरेंट एरिया है, वैसा सिटिंग एंड ईटिंग एरिया नहीं है। तो आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। सो वो चीज़ का जो मज़ा होता है वो नहीं है, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ द कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ द स्मेल ऑफ पिज्ज़ा एंड यू सिटिंग देयर एंड ईटिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
तो नहीं है, तो यू फील सैड कि ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, यहाँ पर था पर अब नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाई, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पहले था अब नहीं है, एंड समटाइम्स यू थिंक अबाउट देम एंड यू थिंक ओ देयर इज समथिंग नॉट देयर. अभी हमारे जो लोकल में हमारा जो ब्रेड शॉप है वेंसडे को बंद हो गया, एंड एवरी वन हैज़ बीन लाइक गोइंग एंड सेइंग कि वी आर गोना मिस यू एंड एवरीथिंग, बट इट्स सैड बिकॉज दे मेड द बेस्ट ब्रेड्स, एंड उनके जो ब्रेड्स होते थे वुड रिमाइंड अस ऑफ फिजी ऑफ आवर होम, एंड नाउ इट्स गॉन एंड वी मिस देम. I'm sure आपके जिंदगी में भी कुछ ऐसे होते होंगे कि आप यू नो किसी चीज को आपको घर की याद दिलाती है, यू नो, एंड आहिस्ते आहिस्ते वो गायब हो जाता है आपके जिंदगी से, एंड देन इट लीव्स अ गैप इन योर लाइफ. नाउ यू हैव टू फाइंड अनदर शॉप दैट सेल्स द सेम टाइप ऑफ ब्रेड जो घर की याद दिलाती है. चलिए दोस्तों, एनीवे लिटिल सिली बेंटा, एंजॉय करते हैं ये गीत.

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और एक वास्तु टिप है हमारे पास। समझ लो आपके घर पर काम हो रहा था या घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था या जो भी, और यू हैव घर के बगल में स्टोन्स अगर पाइल्ड अप है। आई बिलीव ये जो घर से बनता ईट उसको भी कह रहे हैं शायद स्टोन्स। एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव स्टोन्स कलेक्टिंग आउटसाइड योर हाउस। इफ योर हाउस इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, मेक श्योर दैट यू रिमूव ऑल स्टोन्स व्हेन द वर्क इज ओवर। हैविंग स्टोन्स आउटसाइड द हाउस सिग्निफाइज ट्रबल्स। इट मीन्स दैट द फैमिली विल फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन देयर पाथ टू सक्सेस। सो ये एक वास्तु टिप है दोस्तों। और आई गेस अगर आप वास्तु और फैंगशुई में बिलीव करते हैं तो ही इसे अपनाइए, अगर नहीं बिलीव करते हैं देन इट्स ओके जो आप बिलीव करें। लेकिन वास्तु के अनुसार अगर घर के किनारे कंस्ट्रक्शन हो रहा था या कुछ आपके घर पर, तो अगर बटरा हुआ है स्टोन्स तो उसे रिमूव कर दें, क्योंकि ये आपके सक्सेस के लिए हानिकारक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

जस्तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। और इट्स 8:33, आधे घंटे का सफर बाकी है। याद दिला दे आपको दोस्तों कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और हमेशा हम दूसरों की देखभाल में या कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करते रहते हैं और यू फील रेस्पॉन्सिबल उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. एंड इस भागदौड़ में हम खुद को भी भूल जाते हैं और कुछ लोग नहीं भूलते हैं. दैट्स वेरी गुड एक्चुअली. एंड लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सभी के लिए करते हैं लेकिन अपने लिए, जो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए, वो आप नज़रअंदाज करते हैं या लुकाफ्टा नहीं करते हैं या फिर थोड़ा करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? तो दोस्तों, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए आप सोचते हैं आपका है, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए भी होना ज़रूरी है. तो जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आधा फुल हो तो वो पूरा नहीं रहता, ऑफ कोर्स, लेकिन वो सबके लिए इनफ नहीं रहता. अगर आप फुल रहते हो देन यू आर स्पिलिंग ओवर विद लव एंड हेल्थ एंड अबंडेंस एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गिव. तो आप, अगर आप अंदर से यू नॉट हैप्पी, अभी समझ लो आप कॉन्स्टेंटली कोई चीज करते रहते हो किसी के लिए, तो दे विल कम अ टाइम जहां पर आप बर्न आउट हो जाओगे एंड देन वही काम आप थोड़ा सा ग्रजिंगली करोगे और उतना ही नहीं जज्बा से करोगे जो आप डे वन से कर रहे थे. तो क्या हुआ इस टाइम के बीच में क्या हुआ कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा, आपने अपने माइंडसेट को नहीं लुकाफ्टा किया, आपने खुद को हील नहीं किया, आपने अपना जो बाउंड्रीज है वो सेट नहीं किया, यू नो, एंड आपने अपने आप को आगे नहीं रखा. सो दैट हैज़ व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट डे एंड दिस टुडे. तो जो पहले करते थे हंस हंस कर खुशी से, आज शायद थोड़ा हिचक कर रहे हैं एंड झिझक के कर रहे हैं, नॉट झिझक के, झिझक के कर रहे हैं. यह सो थिंक अबाउट इट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए भी उतना ही है जितना दूसरों के लिए आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं. आप खुश रहेंगे तो ही आपका जो हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस होता है, और इट्स कॉन्टेजियस एंड लव इज कॉन्टेजियस टू, सो ये स्प्रेड होता है. और अगर आप अनहैप्पी है, आप अकेले अनहैप्पी रहते हो, कोई आपके साथ जेन्युइनली आपके अनहैप्पीनेस शेयर नहीं करता. सिंपथी सभी दिखाते हैं, एम्पथी कोई कोई दिखाता है एंड आई एम नॉट श्योर इवन इट्स जेन्युइन एज वेल. सो जो आपको जो अपना जो अपने आप को अच्छा बनाना है अंदर से, तो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए उसको बहुत ही सीरियसली लेना है. दोस्तों, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा कम करते हैं तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं, यू नो. सो ऐसा नहीं है. थिंग इज, थोड़ा भी करें लेकिन खुशी से करें, दैट्स व्हाट मैटर्स. तो इसमें आप अपने आप को भी फिट इन करें ताकि आप अपने लिए भी वर्क कर सके, अच्छा अच्छा वर्क कर सके. सो ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: Sunny, hira ko, hira. मुझे प्रोटीन का डिब्बा बना दिया।
1: तू प्रोटीन का डिब्बा नहीं है, तू देसी घी है।
0: मैं फैटनिंग हूँ।
1: देसी घी फैटनिंग नहीं होता है, हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। पर तुलसी, तू हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Digicel. Better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Priya, next month mama ka birthday. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: वेलकम बैक दोस्तों, और अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बहुत मजा आया, आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। हैव अ लवली डे एंड अ ब्यूटीफुल वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन अशुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: मुक्ति का रास्ता दिखलाओ। फैन जिकला तनफोल मोमिनीन वजिर फैन जिकला तनफोल मोमिनीन। तुम अगर नसीहत करते रहोगे, नसीहत की बातें बतलाते रहोगे तो ईमान वालों को फायदा हो जाएगा, बल्कि दूसरे भी इन नसीहतों को सुनकर हिदायत के रास्ते पर आ जाएंगे। अच्छी बातों को सुनने की सिफात जिनमें भी होगी, चाहे अपने हो या गैर, इस रास्ते को अपनाएंगे। तुम्हारा ये काम है और ईमान के तकाजे और पुकार है, ये दावत का ये काम, हिदायत की तरफ बुलाने का ये काम अल्लाह सुबहानहू ताला ने सरबरे कौनीन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया है, और इस काम को अंजाम देने वाले को अल्लाह सुबहानहू ताला ने आखिरत की नेमतों से नवाजने की बशारत सुनाई है। जो हदीस मैंने पढ़ी, इसमें सरकार द्वारम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मर रामिन को मुनकरन पद युग ये रूह भी रही फैन नम यस्तते फबी लिसान ही वही नम यस्तते फबी कल्ब ही वजादे का अदुल ईफान औ वजादे को अदफुल ईमान औ कमा कादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से जब कोई किसी को बुराई करते हुए देखे, गलत काम करते हुए देखे तो क्या होगा? अगर तुम्हें हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोको, ये काम मत करो, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। मर राम इनको मन करन फल योग ये रो भी यदि ही फैलम यतफ अभी निशानी ही। अगर हालात ऐसे हैं कि हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो फिर तुम जबान से समझाओ, प्यार से समझाओ, हिकमत से समझाओ, ये काम मत करो, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला काम है। खुद भी अल्लाह के अजाब में फंसोगे और दूसरों को भी फंसाओगे। और अगर जबान से कहने की भी ताकत नहीं है, हालात कुछ इतने बिगड़े हुए हैं कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है, तो ईमान का तीसरा दर्जा ये बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदा हो अभी उम्मीद है कि दिल में बुरा समझो, दिल में बुरा समझो, दिल से बुरा समझो, वजादी का अदफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। हाथ से रोक नहीं सकते हैं, जबान से रोके, जबान से नहीं रोक सकते तो कम अज कम अपने दिल में तो उसको बुरा समझे कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है। उस पर अपने जिम में कुरन पैदा करो, रम पैदा करो, सोचो। लेकिन ये भी इस ईमान का आखिरी दर्जा है। लेकिन अगर हालात इतने भी खराब हो गए कि दिल से बुराई भी निकल गई, बुरे काम करने वालों से की बुराई से भी नफरत हो नहीं निकल गई, बल्कि उनकी मजालिस में जाकर उसकी हौसला अफजाई करना, हिम्मत अफजाई करना, उसमें शिरकत करके, शरीक होकर के अपने ईमान का जनाजा निकालना, ये हालात आज दुनिया के ऐसे ही है। सोचिए और गौर कीजिए, अजाबी इलाही चारों तरफ मुंडला रहा है, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं हवाएं चल रही हैं तेज, तूफान आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, बस्तियां की बस्तियां उल्टी जा रही है। ये क्यों? जब हमने आसमान वाले को नाराज कर दिया, अपने खुदावंद करीम को नाराज कर दिया, उसको गुस्से में डाल दिया, तो हालात ऐसे ही आएंगे। इसलिए हमारा तो ये फर्ज है कि हम अपनी जात पर भी मेहनत करें, खुद भी नीक रास्तों पर चले, अपने घर वालों को भी चलाएं। हमारा ये कहना कि घर वाले मानते नहीं, घर वाली मानती नहीं, बच्चे मानते नहीं हैं, ये जवाब अल्लाह सुबहानहू व तआला की वहां, इस जवाब से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? सरवरे कौनैन ताजदार हरम नबी मुकद्दम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में आता है, आपकी सीरत तैयबा में आता है कि आप अपने बच्चों को, अपने घरवालों को, अपनी बीवियों को बुला करके जिन अल्फाजों के साथ खौफ खुदा दिलाते हैं, हदीस की किताबों मौजूद है। आप फरमाते हैं, ये मेरी फूफी सफिया, ये मेरी बेटी फातिमा, ये मेरे घर वाले, तुम इस बात में न रहना कि तुम अल्लाह के रसूल की फूफी हैं, अल्लाह के रसूल की बेटी है फातिमा, तुम मेरे घर वाले हो और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी नबी की औलाद होने पर। तुम इस बात में न रहना कि तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। इत्तकिल्लाह, इत्तकिल्लाह, मेरी फूफी सफिया अल्लाह से डरो, मेरी बेटी फातिमा तो अल्लाह से डरो, मेरे घर वालों तुम अल्लाह से डरो, मैं कयामत में तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। इन अकरमकुम इंदल्लाह अस्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुकदम वही है जो तकवा अपने अंदर रखता है, खौफ खुदा रखता है, हर कदम पर अल्लाह सुबहानहू व तआला से डरता है। आइए कुरान करीम की एक और आयत भी आपके सामने रखता हूं। कुरान करीम की एक मुस्तकिल सूरत है, सूरह लुकमान। बहुत मकबूल अल्लाह के बंदे हैं, नबी तो नहीं, रसूल तो नहीं, लेकिन अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इल्म हिकमत की बेनजीर दौलत उनको अता फरमाई थी। वो अपने बेटे से को वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं, बेटा है हमारा, अपने बेटे को बुलाकर उनके सामने जो हिकमत की बातें बयान कर रही हैं, कुरान करीम ने कुछ बातें बयान फरमाई हैं और दूसरी हदीस के किताबों में भी उनकी नसीहतों, बेशुमार नसीहतें बयान की गई हैं। कुरान करीम में इरशाद है, हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से फरमाते, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह से शिर्क के साथ शिर्क मत करो, मुशरिकाना काम मत करो, इन शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, ए मेरे प्यारे बेटे, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, अल्लाह के हक को तो छीना जाता है, मुशरिक की बख्शिश नहीं होती। या बुनैया, ए मेरे बेटे, हमने भी कभी अपने बेटे को बताया है, अपनी बीवी से बताया है, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इसी में यह भी फरमाया गया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अकीम सलात, नमाज को कायम कर, नमाज को पढ़। बेटे से कहा जा रहा है, हमने अपने बेटे से कभी कहा क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो? हमारे घर के अंदर से नमाजों का निजाम चला जा रहा है, औलादें, बीवियां, बच्चे, अजीज और अकारिब नमाजों से कितने दूर हैं। या बुनैया अकीम सलात, नमाज कायम कर, वामर बिल मारूफ, और अच्छी बातों का हुक्म कर, और अच्छी बातों का हुक्म कर, वो नादिर मुनकर, और बुरी बातों से रोक। हजरत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे से फरमा रहे हैं, नमाज को कायम कर, नमाज पढ़, भलाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोक, वो नादिर मुनकर, वस्बिर अला मा असाबका बैन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और इस रास्ते में तुझे जो मुसीबत आए, जो परेशानियां आए, तो उसे सब्र कर, लेकिन हिम्मत मत हार, तो अपना काम कर। इस तरह से अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने औलादों को बिठा करके समझाने की तालीम खुद कुरान करीम में जगह जगह मौजूद है। इससे हमने से हर एक का फर्ज है कि हम अपनी जात पर भी मेहनत करें, हिदायत के रास्ते पर चलें, अपने घर वालों को भी हिदायत के रास्ते पर लाने की कोशिश करें, अपने औलादों पर भी मेहनत करें। हिदायत देना हमारे हाथ में तो नहीं है, तो सरवर कौनीन ताजदार हरम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहते हैं हिदायत तो नहीं हो सकती है, आपके चाहने से तो हिदायत नहीं हो सकती, आप जिससे महबूब रखते हैं उसको हिदायत नहीं हो सकती, हिदायत देना तो हमारे हाथ में है, आप सिर्फ पैगाम पहुंचा। या ये रुसुल, या ये رسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے نبی بس آپ میرا پیغام پہنچا دیجیے، ہدایت دینا ہمارا حق ہے. یہدی بھی من یشاء ویضل بھی من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں جسے، لیکن تم اپنا کام پورا کرو. یہ تعلیم ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم کی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنا کام کرنا ہے، ہدایت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہم راستہ بتلا سکتے ہیں، ہدایت کی باتیں سنا سکتے ہیں، لیکن دائی دعوت کا دینے والا خود اس پر عمل کرے گا تو دعوت پر اثر ہوگی. قرآن کریم کا خود ارشاد ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس سے بہتر کس کا قول ہوگا، اس سے بہتر کس سے اچھی بات ہوگی کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اللہ کے دین کی طرف بلائے، وعمل صالحا، دائی خود اس پر عمل کرتا ہے، وہ بھی خود نمازوں کا پابند، وہ خود برائیوں سے بچنے والا، وہ خود ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہو تو اس کی دعوت کا اثر ہوتا ہے. اننی من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، اسلام پر اسلام کا والی زندگی گزارتا ہوں. سننے والوں کو بتایا جاتا ہے چلو اچھل کر اللہ کو راضی کرو، تم آسمان والوں کو آسمان والے کو راضی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے. آج جمعہ کا مبارک دن ہے، دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، آخرت کی فکر کرو، ہر آنے والا دن موت کی طرف لے جا رہا ہے، قبر پکار پکار کے رہی ہے، آنا ہے تمہیں، سونا ہے تمہیں، سب کچھ چھوڑ کر آنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے لیے تیاری کرنے والا ہی عقل مند ہے، ہوشیار ہے، یہ بولنے والا بھی کمزور بندہ ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں. رب کریم وقت پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیں، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیں، نیک بندوں جیسے صفات نصیب فرما دیں، ہمارے مرحوموں کے ساتھ خاص رحم کا معاملہ فرما دیں، ہر ایک کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں، ہمارے گھروں میں دین والی فضائیں پیدا فرما دیں، برائیوں کے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں. رحیم و کریم مولا، تو بڑی قدرت والا ہے، بڑا کرم والا ہے، کرم فرما، رحم فرما اور حالات بدل دے، مصائب و مشکلات سے ہماری تمام کی اور تمام اپنے بندوں کی تو حفاظت فرما دے. رب کریم تو اپنی شان کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात।
1: और रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 71 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालियां हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक 9 से लेकर साढ़े 9 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियां, ओल्ड विंटेज कवालियां। अगले एक बार तक के लिए आपके साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

याद रहे हर रविवार को आपके साथ फिरोज खान 10 से लेकर 12:30 बजे तक यादों का सफर हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत।